सफर अहम सफर छुट्टी से कहने लगी सुनो सरल बताओ आज मैं क्या मेरी वफा तुमसे मेरी जिंदगी।